0: सच्चाई इससे ज्यादा लतीफ है कि इसको इंसानी लफ्जों में बयान किया जा सके। हकीकत यह है कि जहां जबान गंग हो जाती है वहां से हकायक शुरू होते हैं, जहां अल्फाज साथ नहीं देते वहां से मानी का आगाज होता है। खुदा चुप की जबान में बोल रहा है और हम उसको शोर की जबान में सुनना चाहते हैं। ऐसी हालत में कैसे मुमकिन है कि हम खुदा की आवाज़ों को सुन सकें? इस दुनिया की सबसे कीमती बातें वो हैं जो चुप के बोल में नशर हो रही हैं, मगर जो लोग सिर्फ शोर व गुल की बोलियाँ सुनना जानते हों वो इन कीमती बातों से इसी तरह नाआशना रहते हैं जिस तरह एक बहरा शख्स किसी उम्दा मौसीकी से। खुदा की दुनिया बेहद हसीन है, इसके हुस्न को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। आदमी जब इस दुनिया को देखता है तो बेख्तियार उसका जी चाहता है कि वह खुदा की इस अबदी दुनिया का बाशिंदा बन जाए, वह हवाओं में शामिल हो जाए, वह दरख्तों की सरसब्जियों में जा बसे, वह आसमान की बुलंदियों में खो जाए। मगर इंसान की महदूदियतें उसकी इस ख्वाहिश की राह में हाइल हैं। वह अपनी महबूब दुनिया को देखता है मगर उसमें शामिल नहीं हो पाता। शायद जन्नत इसी का नाम है कि आदमी को उसकी महदूदियतों से आज़ाद कर दिया जाए ताकि वह खुदा की हसीन दुनिया में अबदी तौर पर दाखिल हो जाए। इंसान ने जो तमद्दुनी दुनिया बनाई है वह खुदा की दुनिया से किस कदर मुख्तलिफ है। इंसान की बनाई हुई सवारियाँ शोर और धुआं पैदा करती हैं, मगर खुदा की दुनिया में रोशनी 186,000 मील फी सेकेंड की रफ्तार से चलती है और न कहीं शोर होता है और न धुआं। इंसान इंसानों के दरमियान इस तरह रहता है कि एक को दूसरे से तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचती रहती हैं, मगर खुदा की दुनिया में हवा इस तरह गुजरती है कि वो किसी से नहीं टकराती। इंसान अपनी गलाजत को कार्बन और पसीना और बोलो बराज की सूरत में खारिज करता है, मगर खुदा ने अपनी दुनिया में जो दरख्त उगाए हैं वो इसके बरक्स अपनी कसाफत को ऑक्सीजन की सूरत में खारिज करते हैं और फूल अपनी कसाफत को खुशबू की सूरत में। इंसान के बनाए हुए तमाम शहरों में कूड़े को ठिकाने लगाना एक नाकाबिल हल मसला बना हुआ है, मगर खुदा की बनाई हुई वसीतर दुनिया में हर रोज़ बड़े पैमाने पर कूड़ा निकलता है मगर किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि उसको रिसाइकिल करके दोबारा कायनात की मुफीद अज़ा में तब्दील कर दिया जाता है। जो शख्स हकीकत की झलक देख ले वो इसके बयान से अपने को आजिज़ महसूस करने लगता है, उस पर चुप तारी हो जाती है, न ये कि वो लफ्ज़ों का सैलाब बहाने लगे।
1: अच्छी बात के बाद महकमे सेहत का ये ज़रूरी ऐलान। सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन आवाम को याद दहानी कराता है कि ताज़ा तरीन मौसम पर नज़र रखें और शदीद गर्मी के दौरान में गर्मी से मुतालिक बीमारियों खुसूसन हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। महफूज रहने के लिए पानी बाकायदगी से पीते रहें और कैफीन और अल्कोहल से परहेज करें। हल्के और ढीले कपड़े पहने और हवादार या ठंडे यानी एयर कंडीशन मकाम पर रहें। शदीद जिस्मानी मशक्क़त और तवील अरसे तक बाहर सरगर्मियों से गुरेज करें। बैरूनी सरगर्मियों को सुबह या शाम के वक्त तक महदूद रखें। बाहर काम करने वाले अफराद वक्फे से आराम करें और सायेदार जगहों में बैठें। नौजायदा बच्चे, कम उम्र बच्चे, बुजुर्ग अफराद, हामला खवातीन और दायमी बीमारियों के मरीज ज्यादा हसास होते हैं, इसलिए उन्हें खसूसी एहतियात की ज़रूरत है। बच्चों को कभी भी बंद जगहों जैसे गाड़ियों में अकेला न छोड़ें। जब यूवी इंडेक्स ज़्यादा हो तो जिल्द और आँखों को बराह रास्त धूप से बचाएं। हिफाजती इकदाम इख्तियार करें जैसे SPF 30 या उससे ज़्यादा वाले सनस्क्रीन का इस्तेमाल, यूवी रोकने वाले चश्मे पहनना और साए में रहना। अगर चक्कर आना, सर दर्द, मतली या जहनी उलझन महसूस हो तो फौरन आराम करें और तिब्बी मदद हासिल करें। मजीद मालूमात के लिए मुलाहिज़ा करें chp.gov.hk। गर्मी के मौसम में होशियार रहें, खुद को ठंडा रखें और अपनी हिफाजत करें।

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एहसन खान। आप सुन रहे हैं हांगकांग की शाम अपने इंतहाई अच्छे मेजबान आबिद अली बेग के साथ। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए।
1: जब तो याद आए चैन चुराए।
2: अगर कोई बच्चा 31 दिसंबर 2021 से पहले पैदा हुआ है और वो सितंबर 2027 में किसी सरकारी या मदद याफ्ता प्राइमरी स्कूल में पहली जमात में दाखिला लेना चाहता है तो वो प्राइमरी वन एडमिशन 2027 में हिस्सा ले सकता है जो इस साल सितंबर में शुरू होगा। दरखास्त फॉर्म पुर करने से मुतालिक वजाती नोट्स और मालूमाती पंफलेट 1 सितंबर से 26 सितंबर 2026 तक दस्तियाब होंगे। वालदेन अपने बच्चे के जेर तालीम किंडरगार्टन या किंडरगार्टन कम चाइल्ड केयर सेंटर से दरखास्त फॉर्म हासिल कर सकते हैं। ये फॉर्म जिले दफातर के होम अफेयर इंक्वायरी सेंटर्स, रीजनल एजुकेशन दफातर और एजुकेशन ब्यूरो के स्कूल प्लेसेस अलॉटमेंट सेक्शन प्राइमरी वन एडमिशन से भी हासिल किए जा सकते हैं। वालदेन मुख्तलिफ जबानों में प्राइमरी वन एडमिशन के मालूमाती नोट एजुकेशन ब्यूरो की POA वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं। मुकम्मल शुदा दरख्वास्त फॉर्म और तमाम मतलूबा दस्तावेजात वालदेन की पसंद के किसी एक सरकारी या मदद याफ्ता प्राइमरी स्कूल में स्कूल के दफ्तरी औकात में 21 सितंबर से 25 सितंबर तक बराह रास्त जमा करवानी होंगी। जो वालदेन प्राइमरी वन एडमिशन ई प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं और अपने अकाउंट को आई एम स्मार्ट प्लस से मुंसलिक कर चुके हैं वो अपनी दरखास्त 17 सितंबर से 25 सितंबर तक ई प्लेटफॉर्म के जरिए जमा करा सकते हैं। वालदेन को चाहिए कि वो एजुकेशन ब्यूरो की ताज़ा तरीन प्रेस रिलीजेज और POA वेबसाइट पर दी गई इत्तला से बाखबर रहें। प्राइमरी वन एडमिशन सिस्टम से मुतालिक मजीद मालूमात के लिए वालदेन एजुकेशन ब्यूरो के स्कूल प्लेसेस अलॉटमेंट सेक्शन से फोन 2832-7700 पर रब्ता कर सकते हैं। इस ऐलान के बाद एक कहानी दिल को छू लेने वाली, अफसोस के इसके मुसन्निफ का नाम मालूम ना हो सका, मुरझाए हुए फूल। मिस आयशा

0: अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सुहेल अहमद अजीजी, आप सुन रहे हैं हांगकांग की शाम अपने मेजबान आबद अली बेग के साथ।
1: उर्दू के मारूफ मिजाह निगार इब्ने इंशा ने उर्दू की आखिरी किताब में इब्तदाई साइंस पर अपने मजमून में कुछ यूं लिखा है, मादे की तीन किस्में हैं, ठोस, माए, गैस। ठोस का मतलब है ठोस, जैसे ठोस दलाइल, ठोस इकदामात, ठोस नताइज वगैरह। ठोस दलाइल ऐसे वादों के लिए लाए जाते हैं जो खुद कमजोर हों। सबसे ठोस दलील अब तक लाठी ही साबित हुई है, भैंसों के लिए भी, इंसानों के लिए भी। ठोस इकदामात इतने ठोस होते हैं कि कभी नहीं किए जाते, बस हुकूमतें उनके ठोस वादे किया करती हैं। ठोस नतीजा ये निकलता है कि ऐसी हुकूमतें बहुत दिन नहीं रहती। ठोस अशिया अपनी शक्ल नहीं बदलती, हाँ दूसरों की बदल देती हैं। पत्थर ठोस है, जैसा है वैसा ही रहता है, लेकिन किसी आदमी के लगे तो वो कैसा ही ठोस क्यों ना हो, उसमें से माए और गैस वगैरह निकलने लगते हैं। माए जैसे आंसू, गैस जैसे आहें, गालियां वगैरह। माए का मतलब आप जानते ही हैं, लिहाजा तफसील में जाने की जरूरत नहीं। पानी भी माए है, दूध भी माए है, इसीलिए मसल मशहूर है, माए को माए मिले कर कर लंबे हाथ। बाज़ औक़ात माए को माए में मिलाने का नतीजा बड़ा ठोस निकलता है, चुनाचे बाज़ गवालों ने इसी फार्मूले पर अमल करके बड़े बड़े मकान खड़े कर लिए हैं। ये कौल भी दूध वालों ही पर सादिक आता है, माए तेरे तीन नाम, परसा, परसू, परसराम। बाज़ औक़ात ठोस को ठोस से टकरा कर भी माए हासिल करते हैं, मसलन भैंस को डंडे से टकराया जाए तो माए देती है वरना नहीं देती। माए को सयाल भी कहते हैं, जैसे आतिश सयाल, हीर सयाल। गैस का मतलब भी हमारे अजीज तालिब इल्मों से मख्फी ना होगा, जिसे देखो इसी की शिकायत लिए फिरता है। यहाँ हम उसके लिए एक आजूदा नुस्खा दर्ज करते हैं। अजवाइन, काला नमक, कलौंजी और अतरीफल हम वजन लीजिए और हथेली पर, अपनी हथेली पर रख कर फांक लीजिए, इंशाअल्लाह फायदा होगा। सोडा वाटर भी मुफीद है। गर्मियां आती हैं तो कराची का महकमे वाटर सप्लाई पानी के नलकों में गैस सप्लाई करने लगता है, इसीलिए लोग गुसल खानों में रोटी पकाते और बावर्ची खानों में पसीने में नहाते देखे जाते हैं। हरारत का मतलब है गर्मी। गर्मी का लफ्ज आसान है, इसे इस्तेमाल करें तो खतरा है कि तालिब इल्मों की समझ में आ जाए।

शौकत थानवी अपने मजमून लखनऊ में लिखते हैं, जिन चीजों का अब तक पता चल चुका है उनमें से एक पैदावार भी है, लखनऊ की खास पैदावार यहाँ के शायर हैं जो आम तौर पर पाए जाते हैं और इस कसरत से पाए जाते हैं कि गुज़िश्ता मर्दमशुमारी के आदाद से शायरों की तादाद ज्यादा थी। शायर लखनऊ में उस शख्स, जगह या चीज को कहते हैं जिसके नाम के साथ एक तखल्लुस भी लगा हो। लखनऊ की मखलूक शेर कहती और दाद के सहारे जीती है। इस खास मकसद के लिए आए दिन मुशायरे मुनाकिद होते रहते हैं ताकि दाद मिलती रहे और शायर बाकी रहे। इस पैदावार को फरोग देने के लिए इसकी आम इजाजत है कि जिसका जी चाहे शायर बन जाए। न कोई अखलाकी पाबंदी है, न कोई कानूनी रोकथाम। मुशायरे भी बगैर हुक्काम की इजाजत हासिल किए हुए होते रहते हैं और काबिल दस्त अंदाजी पुलिस नहीं समझे जाते। तिजारत के सिलसिले में ये अर्ज कर देना जरूरी है, लखनऊ हमेशा से ताजिर होने के बजाय गाहक होना पसंद करता चला आया है। फिर भी चूंकि एक शहर के लिए बाजारों का होना और बाजारों में दुकानों का होना जरूरी है, लिहाजा यहां भी कनकवों की तिजारत पर ज्यादा जोर दिया जाता है। वैसे बालाई और शीरमालों की दुकानें भी पाई जाती हैं, बेदमुस की खपत भी ज्यादा है और दुकानें भी काफी, मगर ये कोई तिजारत भी नफा की गरज से नहीं की जाती बल्कि महज अखलाकन और इस तरह के गोया मक्ते में सुखन गुस्तराना बात आ पड़े। सनत व हिरफत के सिलसिले में लखनऊ को खास शोहरत हासिल रही है। यहाँ की खास सनत यहाँ की जबान है। जबान के बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं जहाँ जबान ढाली जाती है, मुहावरे तैयार किए जाते हैं। तैयार शुदा मुहावरों की मरम्मत होती है, जबान के उयूब निकाले जाते हैं, उसको साफ किया जाता है, उसमें शीरीनी पैदा की जाती है, उसको नर्म और लतीफ बनाया जाता है, उसमें नहायत दिल आवेज लोच और नहायत दिलकश लचक पैदा की जाती है। बाहर से आई हुई जबान दराजियों को जांचा जाता है। मुख्तसर ये कि जबान के सिलसिले में तमाम खिदमात अंजाम पाती हैं। हरफत में यहाँ का तकल्लुफ खास तौर पर मशहूर है। इसमें इल्म मजलिस, नशिस्त बरखास्त, मिलने जुलने, बात करने, कपड़ा पहनने, खाना खाने, मुख्तसर ये कि हर मौके के लिए पुरतकल्लुफ आदाब वजा किए जाते हैं और जो आदाब वजा हो चुके हैं उनकी हिफाजत की जाती है। बात करने के औजान मुकर्रर हैं और इन औजान की पाबंदी से बात करना बजाय खुद सनद भी है और हरफत भी। वालदैन जो अपने बच्चों को डांटते और मारते हैं वो अपना गुबार तो शायद निकाल लेते हैं, मगर उनका ये फेल वालदैन और बच्चों के ताल्लुक और बच्चे की जिस्मानी और नफसियाती नशोनुमा को नुकसान पहुंचा सकता है। तहम्मुल मिजाजी से काम लें और वालदैन के फराइज की अदायगी के मजीद मुनासिब तरीके तलाश करें। अगर आपको मदद चाहिए तो अपने खानदान के अफराद, दोस्तों या पेशेवर अफराद से बात करें या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की हॉटलाइन 2343-2255 पर कॉल करें। 2343-2255। तहम्मुल मिजाजी से काम लें और वालदैन के फराइज की अदायगी को आसान बनाएं। प्रोग्राम के आखिर में एक गीत रूना लैला की आवाज में। हांगकांग की शाम आप सुन रहे हैं RTH के रेडियो 3 पर। होम अफेयर्स डिपार्टमेंट के तावुन से ये महफिल सजती है। हर इतवार की शाम 8 बजे की खबरों के फौरन बाद हमारी नशियात आप इंटरनेट पर लाइव या गुज़िश्ता एक साल के प्रोग्राम आर्काइव में भी सुन सकते हैं। विजिट कीजिए RTH के रेडियो 3 की वेबसाइट या अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए RTH के ऑन द गो या RTH